सो इतनी सेवा प्रवान कर वो धनता दे जो गुरु की आप साहेब गुरु ग्रंथ साहब जी जो भी हजर बीच बैठ के हरी जस हरी कीर्तन बड़ी श्रद्धा से भावना ना सवन करो सुदास भी अपने उच्चे भाग संबंध है आप वर्गी साध संगत के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया है जेडे कि गुरु ग्रंथ साहब के रागा के शौकी है नहीं तो ज्यादातर गुरुद्वारा फिल्मी कीर्तन चलता है जिन्होंने कहते अस वे वे रागी हैं संत बनते हैं सब फिल्मी टूना गा रहे हैं महाराज बख्श करम सारे साल गुरु के बख्श बराबर रखम कीर्तन सुनने की श्रद्धा बख्शन आओ अंत सरबत मारी भाई जितने गुरु चरणा बैठे हो छोलियां लड़के यही अरदास

0: तेरे खंड सत्य ब्रह्मन सत्य तेरे नो सत्य आकार सत्य तेरे करण सब विचार सत्य तेरे अमर सत्य दीवान सत्य तेरे हुक्म सत्य फरमान सत्य तेरे कर्म सत्य निशान सत्य तो दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब दू
1: सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुछ सच्चे बाजा नानक सत्य सच्ची जो मर जमे सो कच कच महला पहला
2: वड्डी उड़े जा वड्डा ना वड्डी उड़े सत्या वड्डी उड़े निश्चल था वड्डी उड़े जाने ला वड्डी उड़े बिरसा पाओ वड्डी उड़े पुछंदा वड्डी उड़े जा पिया नानक और नक थिन जे की तक ना सरु जा
0: महला दूजा ए जग सच्ची की कोठरी सच्ची कब जबा एक नाम कमाल एक नाम कुमे करबनास एक नाम पाणे कड ले एक नाम आया बचनवास ए पी आखन जापे किसने रा नानक गुण गुण जाने जाको आप

0: सतकर्ता श्लोक मला पहला बिस्मार नाथ बिस्मार बैद बिस्मार जी बिस्मार बै बिस्मार रू बिस्मार रंग बिस्मार नागे फिरे जन बिस्मार पौन बिस्मार पानी बिस्मार दगनी खीरे बनानी बिस्मार तरती बिस्मार खानी बिस्मार साधके प्राण
1: बिस्मार स्नोक बिस्मार बिजोग बिस्मार पुख बिस्मार पोह बिस्मार शिफ्ट बिस्मार सला बिस्मार औजल बिस्मार दरा बिस्मार नेड़े बिस्मार दूर बिस्मार देख के हाथ ना दूर देख बड़ान रिया बिस्मार नानक बुद्धन पूरे
0: महला पहला कुदर से कुदर सुनिए कुदर

श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने खालसा पंथ की सिरजना की। गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे सिख भाई नंद लाल, भाई देसा, भाई प्रहलाद आदिक सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर अज श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी धर दशमेश पिता के चरणों बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करने वाले खालसा पंथ नू रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नू आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है? सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल के सवालों का

पहला नियम है गुरसिख दा के गुरु की संगत करनी। सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके, ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउन वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सत संग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं। गरीब नवाज साहब।

कहाँ वे हर जस सुनते बात लवे। गोबिंद सिंह वह जमपुर जावे ते गुरसिख अमृत वेले उठिया। अमृत वेले उठ के सतगुरु जी दी हजूरी अंदर पहुंचया ते गुरु की संगत अंदर बह गया। गुरु की संगत विच बैठिया होया सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दे पावन बचन सुनदा नहीं बल्कि नालदियां नूं भी नहीं सुनन दिंदा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ऐसे गुरसिख प्रथियाए लिखदे ने भाई हर जस सुनते बात चलावै। हरी परमात्मा दी बाणी सुनदियां हरी परमात्मा दी कथा हो रही होवे हरी रब परमात्मा दी गुरबाणी दा कीर्तन हो रहा होवे ते हर जस सुनदियां आपो विच गल्लां करदे रहण गल्लां बातां करन वाले गुरसिख नूं महाराज कहंदे हन उसने जन्म व्यर्थ गवाया सतसंग विच बह के दूजे दा भी समा बर्बाद कीता। ऐसे गुरसिख नूं जमा दी मार पैंदी है सीधा जमपुर जांदा। हर जस सुनते बात चलावे हर जस सुनते बात चलावे गोबिंद सिंह।

अगला कर्म है भी दसवंध, जड़ी किरत कमाई करनी उस विचों दसवां हिस्सा गुरु के अर्पित करना ते गरीबां गुरबियां दी सेवा करनी। दसवंध गुरु

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर दें साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची दरगाह।

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैण उसनू मां भैण दा रूप जाने, ती नू ती दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैण जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैण नू मां भैण ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है वह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू इको जिहा प्यार देवे।

सात जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिनों तक बनी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु अज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु अज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़िया दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु अज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते कोड़ा हो जांदा। होए सिख सिर टोपी तरै सात जन्म कुश्ती।

अकाल पुरख महाराज दे दिते हुए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूबहू उसे तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क पा दे।

जी साहब ते जाप साहब तो बगैर जेड़ा गुरसिख खाना खांदा ना खुराक खांदा जेड़ा गुरसिख भोजन छकदा जल पान छकदा गरीब नवाज कहंदे ओ भोजन नहीं ओ खुराक नहीं ओ विस्टा दा किरम होके ते ओ विस्टा दे अंदर मुंह मार रहा है बिना जपजी साहब ते जप साहब तो बगैर बिन जप जाप जपे बिना जो जेवै प्रसाद सो बिस्टा का किरम होए जन्म गवायो बाद व्यर्थ जन्म गवा दिता है। इथों सिद्ध है गुरु के सिखो अमृत वेले हो उठ के जपजी साहब दा पाठ।

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे। ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछ। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नू आज सचे पातशाह ने आउन वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूर ने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा।

जगत के तजेश सिंह जवान। वड्डे कुकर्म ने सारे संसार दे पंज ऐब, पर नारी, जुआ, असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इस दी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशा खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदिक दी वरतों ना करनी। गरीब नूं अज कहिंदे इह पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे, ओ जवान गिणिया जाएगा, ओही असली

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे पवित्र होवे ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन रहत बिना ना सिख कहावै रहत बिना दर चोटां खावै रहत बिना सुख कबू ना लह कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा। जिसने रहत त्याग दिती है ना पाहल पी कुकर्म कमावत पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा। गरीबन वाल सचे पातशाह महाराज उन्हूं कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो उन्हूं छेक दिता जावे जिहड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीबन वाल सचे पातशाह का प्यारा सिख इसने ये रहतनामा गरीबन वाल सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया भाई देसा जी ने लिखिया बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दिते हुए इस रहतनामे दे ते गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी के वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज फरमान

0: भाई जोगा सिंह वेख रहा है किनू वेख रहा है फरीद जी ने लिखिया है फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़िया गंदला गंदलों के उत्ते भाई व्यो लपेटी हुई व्यो दिया गंदलों उत्ते खंड लपेटी हुई पर विच जहर भाई जोगा सिंह ने सोचिया पौड़िया थानी चढ़ जावा उपर नाल ही छाओ मना आनंदपुर साहब इथों नेड़े है कोई वेख ना लवे अजे नहीं जाना थोड़ा समा ठहर जाते हां जिस वेले दुनिया अपने अपने घर सौ जाएगी फिर जाऊ थोड़ी देर बाद भाई जोगा सिंह सोचिया भी हुण लोकी अपने अपने घर चले गए कोई नहीं वेखदा तो भाई जोगा सिंह अज जिसका मन कमजोर हो चुका है हमें ते हंकार उची वेसवा दे चवारे दी पहली पौड़ी ते पैर रखदा या कुछ नहीं कछ लक दी मारे ताने एओ पेक तेरा सदगुरु जाने ओए पंजे कक्के तार के ते झूठ बनाया ठाठे जा सिखा कर आपने कर जबजी दा पाठे अमृत वेला तो गुरबाणी नाल जुड़ना सी किधर आ गए पहरेदार दे बचन सुन के भाई जोगा सिंह जिना पौड़िया थाणी उपर चढ़िया सी हेठा उतर आए हेठा आया कोई दिल जो ख्याल आ गया फिर पौड़िया ते चढ़ गई अगे तो पहरेदार ने उन्होंने कुछ किया सी ए उपर पहुंचिया पहरेदार ने कहा मुड़ आ गए हैं हां क्यों आए हैं दो गल्लां तेरे नाल करनिया
1: कर
0: की कहना चाहता है भाई जोगा सिंह ने कहा मैं इस वास्ते इत्थे नहीं आ सकता कि मैं गुरु का सिख हां पहरेदार ने कहा इस नरक कुंड विच पापी बंदे आउंदे इस बूहे दे उत्ते तेड़े बंदे आउंदे हन ते कलगियां वाले ने तो सिख नूं इक रोशन मुनारा बनाया है वह अनेरी क्यों फिरे इस वास्ते भाई गुरु का सिख इत्थे नहीं सौंदा भाई जोगा सिंह ने कहा ठीक है जे मैं गुरु का सिखा इत्थे नहीं सौंदा फिर मेरिया अखां धोखा नहीं खांदियां तू भी इत्थे गुरु का सिख जापदा तू इत्थे क्यों आया आखो श्री वाहिगुरु उस वेले प्यारी साध संगत पहरेदार दे नेत्र सजल हो गए हैरान होके भाई जोगा सिंह ने कहा कोई जरूरी ड्यूटी है पहरेदार ने कहा हां भाई यह तो मजबूरी की ड्यूटी पिया बजाता आखो श्री वाहिगुरु मेरा चित नहीं खरो करता इतने खड़ोन वास्ते पर मजबूरी की ड्यूटी भाई जोगे ने कहा तो यह मजबूरी की ड्यूटी छड़ क्यों नहीं देंदा पहरेदार ने कहा कि करा किसी वेले किसी ने कहा सी मैं तेरे जोगा ते मैं भी कह बैठा जे तू मेरे जोगा ते मैं तेरे जोगा ओदी बांह फड़ी सी बांह फड़े दी लाज प्या रखदा आखो श्री वाहिगुरु छड़ी नहीं जाती मेरा चित तो नहीं करता पर मजबूर चंगा भाई तेरी मर्जी भाई जोगा सिंह हेठा उतर आया नाल दे सिख नू जगाया दोवें तुर पे आनंदपुर साहब पहुंच गए आनंदपुर साहब जी का ध्यान धर के प्यारी साध संगत बोले सतनाम अगे मेरे कलगे वाले दा दरबार सजिया होया सुरती नाल कर लो दर्शन ते प्यार नाल आखो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब भाई जोगा सिंह पहुंचिया पर अंदरों सोचता है मना गुरु अंतर जामी है पता नहीं की सजा देवेगा आखो श्री भाई पर जिस वेले भाई जोगा सिंह पहुंचिया हजूर ने दूरों वेखिया ते प्यार नाल मेरे चौजी पातशाह कहते हैं कि जोगा सिंह पाई आखा जी आया जोगा सिंह पाई

तो भाई जोगा सिंह ने कहा महाराज फिर ए भी चंगा हो गया, पता लग गया कि तू अपने सिखा की सहायता कर दया खोसरी वाहिगुरु। तो हजूर कहन लगे जोगिया एदा मतलब की होया भी तू मेरी अजमायश की महाराज जिवें समझो। तो पंथ दे वाली चोजी पातशाह दे नेत्रा च जल जान लग गया, हजूर वैराग चा गए, कहन लगे जोगिया मैनू अगे भी सिखा ने अजमाया, किस तरह अजमाया आओ जरा प्यार नाल सुन। हजूर ने मुखातब होके भाई जोगा सिंह नु कहा बहुती लोड़

हमारी जेहवा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आना हर तुम बड अगम अथाह।

हमारी जेबा एक प्रभ जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कमन गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमन गुण कही है जेबा एक तू समर्थ बड़ा मेरी मत थोड़ी मेरी मत थोड़ी हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी मत थोड़ी तू समर्थ बड़ा बड़ी हो बड़ा।

बड़ी हूँ बता अपार तेरा मर्तबा, बड़ी हूँ बता अपार तेरा मर्तबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, तेरो थान तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा तेरा थान सुहावा, अर्थ सुहावे ताल सुहावा विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना कोई, जिस पापी को मिले ना कोई, शरण आवे।

जन नानक को हर बस ले हो, जन नानक को हर बस ले हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जबे आनिया हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाहा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला, हर कृपा कर।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूढ़ नहीं पायो, किन किन सब हो कर जाना, एक रूप जिन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध भाग ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर इह जग मू करा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीपक ते दीप जगायो, जग वरदान सवा आवा, रामदास तब गुरु विचे पूर्व देवड़ा इसदी वस्त तिसे घर आवे, बैठा सोधी पादशाह, रामदास सतगुरु जंतो मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग, कभू को पावे आत्म प्रकाश को, वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे जंतो, शिव मन कहना तजात कबिलाश को, जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटाजूट पेख किए फिर उदास को, सो तिन सतगुर सुख भाए कृपा।

गुरु साजी दवाजी सात सिंह जी हो राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असीं ऋषभ कहने आ सा तों बाद दूसरा स्वर रे है उसनों ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचमा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन्हों दोनों सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम होंगे, जिस तरह

महावीर दी धर्म दृष्टांत आदर दी देम दिरना भागर दी धर्म दृष्टांत आदर दी देम दिरना भागर दी ब्रिक्ते

pega a perna, tá no dedão, não vem, vai dar viver, tá no dedão, não vem. नक्षत्र वीणा का स्वर है दीन, तिरना जो है यह सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितारे च वजदा और दीन जड़ा है नक्षत्र वीणा में वजदा, यह साजा के दर्शन कराए ने।

जल कर घर तो भागे भंश बचते घर सो भागे वाजे भंश बचो वाजे भंश भाजे भंश बचते घर सो भागे घर सो भागे भंश तो कुमारिया हर अनहद बाजे नंद सरोवर पाटी संतापुत्र

रोग पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात दोई दया खेले करमी आपो अपनी सारे जपो जिन्नी नाम मशक्कत नानक।

0: जुगादगुरुये नमः जुगादगुरुये सतगुरु नमः
1: श्री गुरुदेव
0: गुरु बापे फिटके से फिटे गुरु बापे फिटके से फिटे गुर अंगद की ते कुआरे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे गुर चौथी पीढ़ी टिकिया गुर चौथी पीढ़ी टिकिया जिन निंदक दुष्ट सब तारिया जहान निंदक दुष्ट सब तारे तारिया जहान लहया अभिमान।

हमारी जेवा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम वट अगम अथाह।

हमारी जेबा एक प्रभु जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कमन गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमन गुण कही है जेबा एक तू समरथ बजा मेरी मत थोरी रा मेरी मत थोरी रा हम अज्ञान अल्प मत थोरी तू समरथ बड़ा वड्डी हो बड़ा।

हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मरे हमारा अपना जान करो पितपारा हमरे दुसवे तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिए सा पैरन को वास करिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रे प्यासा तुम्हें छाड़ को वरना त्याऊं जो बरचाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास न भरिए उज्जो सदा हमारे पच्छा श्री स्तुज्यो करियो रक्षा राख लियो मेरा खनहारे सैब संसार प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चितर जिसकंता काल पाए ब्रह्मा भवतरा काल पाए शिव जी अवतरा काल पाए कर्पिशन प्रगासा सकल काल का किया तमासा जवन काल जो सुखियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जवन का सब लोग सुवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन का सब जगत बनायो देव दैन जक्षन उपजायो आदंते के उतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिशिखो मारी सकल प्रजा दिना सवारी सिवन को सिवन सुख दियो शत्रुन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछान चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जान जब युद्ध कर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अवारा जब या कर कर हो कबू तुम्हें मिलत दे तरसमू जेते बदन से साथ आए आप अपनी बुद्ध उचारे तुम सब ही तेरे

कौन सिमट प्यो शंकरे खेटा सगली शिष्य काय चंबो आजुगा सरु संयम्ब और अच्छा मेरी तुम करो सिख वार असिख संगरो दुश्चिंत उठवाता सकल बलेश करुणन खाता जी अस्तुता सरणी परे तिनके दुष्ट दुख है मरे पुरख जम पग परे त्यारे तिनके तुम

0: भैया पाएंगे जब ते तुम्हारे तब ते को वाम तेरे नियाने राम रीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो
1: सिमरो शास्त्र वे सब वो भेद के हम एक न जान्यो कृपा तुम्हारी कर मैं न क्यों सब तो बखान्यो सगल द्वार को छाड़ के वाहेगे की लाज वस गोविंदा स्तुआ राम कली मल्ला तीजानंद कमका सतगुर प्रसाद आनंद प्या मेरी माय सतगुरु मैं पाया सतगुरु ते पाया सह छेती मन वजिया वधाइया राग तन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दो तो गाओ वरी केरा मंजनी वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मना मेरा तू सदा रो हर नाल हर नारो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला सुमरा स्वामी सो क्यों मन विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो नाले साचे सहबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ जिस ते सो पाए सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसाए नाम जिनके मन वसया वाज शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिस वडियाइया कहे नानक सुनो संतो सब त्रोपे यारो साचा नाम मेरा धारो वाजे पंशो चित कर सवागे कर सवागे शब्द वाजे कला चित करतारिया पाइन दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुरकरम पाया तुझे

पातुक बिना से गुरु अमरदास परसी सिद्ध साधक आशा से गुरु अमरदास पर

अनक जन्म बीती अन परमाई, अनक जन्म बीती अन परमाई, कर वासना देवे दुत्तर माई।

और वार पार के दानिया, और वार पार के दानिया लिख ले आल पता मुझे जम डंड न।

0: हर हर नाम निदान है, गुरमुख पाया जाए तन मन शीतल हो,
1: शीतल हो, हर हर नाम निदान है,

सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस मृत दुर्मत मलनासी।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतसा सब कुछ है तेरा माने में माने तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता,

जो तो करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरण शरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आला दे इस दिन आम की पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

हम जाएंगे तो तुम ते लेना तू मेरा देना जो तुम्हें सोई सुख सहना जो तुम्हें सुख सहना हर आपे हुए कृपाल आप ही लाएंगे।

सुप्तजे मदिन होत साधु तुरे आवण जानू रे चित पाई जल मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दाज गुरु गुर सच्चा सिद्धन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन नानक सब बनिहार हर गुण गाओ सा सुपाई हर गुण

सबो कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उना ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे वपारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

मनुख भगती करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषा दे चरणा दी पूजा कर, उना दे चरणा ते सियाणपा छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तेनू छड़ा लेंगे। कबीर जी ने भी आखिया